जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाए तेन तोर मस्तक लिखया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया।

शासन करी। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह भगवती पाचे दसवें प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याय। फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दया बैठा है। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पारदार अंतर के खर्च सत। बोलो जी वाहेगुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहब जाते चाली मुक्ते हठियां चपियां तपियां जिन्हें नाम चपया वंड चकिया। देव चलाई तेग वाहे देख निटकी तदना प्यारे सत्यारियां की कमाई दते अंतर की। बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म है सी दित बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइया चरखड़िया चढ़े आरे नचराए गए गुरदान सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसे ते कैसा स्वासा संग निभाया तिना की कमाई दते अंतर की। बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्तां सवाज गुरुद्वार दते अंतर की। बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम किताब है चित आवण का सदका सर्व सुख हो वह जहां जहां गुरु खालसा साहब तहत देख दे की फतेह बिरद की पहज पंथ की जी श्री साहब जी साहेब खालसा जी के बोलबाले। बोलो जी वाहेगुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुगड़ अटल धर्म क्या जयकार। बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा मत उचे मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु गरीब नवाज पंथ सदस्य राज्यो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप पंथ नूं छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की रात सेवा संभाल दिता है। अपने खालसा जी ने बख्शो हे न्योटियां दी ओट गुरु न्यासरियां दे आसरे गुरु धन धन गुरु।

हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना, हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना, हम संतन स्यों बन आए, पूर्व लिखिया पाई, यो मन तेरा पाई रहाओ, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत परे भंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहा करे गो, जो फाट्यो सगलो लेखा, महा आनंद पे सुख पाया, संतन कै परसादे, कहो नानक हर स्यो मन मान्या, रंग रसे रंग रते बिस्मा दे, संतन स्यो हमला खाटिया, हर भगत परे भंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहा करे गो, जो फाट्यो सगलो लेखा, महा आनंद पे सुख पाया, संतन कै परसादे, कहो नानक हर

0: कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मादे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सत्कारयोग सत्कार संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज बख्शिश चार संगत ने मृषदा पावन साहब पृथक गुरबाणी सुखमी साधु सपूर पाठ कीते ने। ऐस वे सीधा समा जान के आपने सोदर रह साहब के पाठ शरण किए हैं। अरदास के साथ ये भरिया ने महाराज बख्शे पितुर राम शरण किए हैं। सो शास्त्री राज जस पाठ समा गुरु साहबा ने आप सब गुरु पातों ने बख्शिश किया है। और सत्संग जी आप संगत ने बेनती है कि आप हर रोज शामा की कीर्त पाठ शरण अटेंड करते हो। सो सारी संगत को बार बार बेनती है कि जरूर गुरु घर हर रोज आया करो और मत्था टेको अरदास करो। तो जिन्हें देर तक चाहो महाराज जिकी को बैठ के सत्संग जी कथा कीर्तन दरबार शरण कर सकते हो। बाकी आज सब संगत को बेनती है कि जो आप देख रहे हो गुरु घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो बेअंत माया का खर्चा होना है और बेअंत परिवार वालों दसवां सफर करते हुए संगत ने माया गुरु घर भेटा की है। सो बटभागे हैं जिन्हां जिन्हां ने भी माई भाई ने अपना दसवंत सफल नहीं किया उन्हें सारे बेनती है कि जरूर गुरु घर माया भेटा करके तुसी अपने जीवन अपने माया कमाई नूं सफल करो ते गुरु दी खुशियां प्राप्त करो। परिवार च सुख शांति वास्ते अरदास करो। सो सत्संग जी आप संगत ने बेनती है कि अज मेमोरियल डे है उसकी छुट्टी सारियां संगतां नूं जरूर वध तो वध आओ गुरु के चरण छाट बह के अपने जीवन की घड़ियां सफला करो। बाकी सत्संग जी मई 27 तो लैके 31 तक गुरु घर साहिब दे कीर्तन कर रहे हैं भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। आओ जरूर हर रोज आदियां ला के गुरु दी कुड़ियां खुशी प्राप्त करो। तो सत्संग जी आप संगत ने बेनती है कि जून 1 तो लैके 7 तक हर रोज शाम दे कीर्तन दरबार होया करनगे कि जो साका नीला तारा सी उहदी याद विच उन्हां सारे शहीदां नूं समर्पित। आओ सारे गुरु घर आके जरूर थालियां पढ़ो उन्होंने आत्मा की शांति वास्ते अरदास करिए। गुरु महाराज चरण अरदास करिए उन्होंने अपनी आत्मा धन्यवाद बख्शिश कर पिछे पर सुख रख। जून 2 है जन्मदिन बाबा जरनैल सिंह जी संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडर वाले का। तो आप संगत ने जरूर उस दिन हाजियां पढ़ के उन्होंने चिंता की भेंट करनी है। तो सत्संग जी आओ आप संगत ने बेनती है कि जून 4 है अटैक ਔਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 1984 ਦਾ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ੁਕਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਚਾਂਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਰਬਾਣੀ ਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਸਰਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ 7 ਤੱਕ ਆਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸਾ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਪਾਲਾ ਕਰਨਗੇ। 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:45 ਤੱਕ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। 7 ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੀਲਾ। ਸੋ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 8:30 ਤੱਕ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਅਦ ਸਰਨ ਕਰੋ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਸਰਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

कहो नानक सब तेरी वड्याई। बोला जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वाह श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासियां होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनौने दावे ताए। सब थाई होना सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी। सब थाई होना सहाय दसा पातशाह की जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना जी। धन धन श्री गुरु नानक देव गोविंद रूप सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आप जी का कोटान कोट शुक्र लख लख धनवाद। अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जी ने अपने पवित्र पावन खुले दर्शन दारे बख्श के समूह संतान निहाल किया है। इस वेले आप जी के हजूर कीर्तन सुहले साहब जी के पाठ हुए। सुखासन की सेवा हुई। बाणी का पाठ करद सुखासन की सेवा करद ने कई प्रकार दुलां गलतियां हो गई हो अंजान बच्चे समुझ के बख्श लेना। अगो वास्ते शुद्ध से स्पष्ट बाणी पढ़ने की शुद्ध सेवा करने की मत बख्शनी। आप जी के भाणे अंदर चार पैर दिन सुख न बतीत हो। रात्रि आई भाणे अंदर सुख न बतीत कराना। अमृत वेले जागना बख्शना। आप जी के पावन सुखासन साहब तैयार हैं। आप जी अपने आसन से विश्राम करो। समूह संतान छुट्टिया बख्शो। अखरवाद घाट पड़िया पुलचुक माफ करना। सरबत दे काज रास करने सही संत प्यारे मेलने। जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहि मिटावो। सिमरो जास विशंबर एक, नाम जपत अगंत अनेक। वेद प्राण सिमर सुदाखिर, कीने राम नाम एकाखिर। किनका एक जिस जीव सावै, ताकी महिमा गनी न आवै। काकी एक दर्श तुहारू, नानक उन संग मुहे उदारू। सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। रहाऊ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना पसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कच बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भाव न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। सी सिमरह जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहि समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते। प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरह से बे मोहताजी, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरह तिन अनंद कनेरे, प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबू न चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी। प्रभ कै सिमरन ने चले आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ का सिमरन सुख प्रभ सिमरन कांत न पार। सिमरह से जन जिन को प्रमया, नानक तिन जन सरनी पाया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पाए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीचम कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रसाद। अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई। जय महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम किन माए उदारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तर है। अनिक माया रंग तिक न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जी मार्ग जात केला, तै हर नाम संग होत सुगेला। ऐसा नामन सदा त्याई, नानक गुरमुख परम गत पाई। छूट नहीं कोट लकबाही, नाम जपत है पार पुराही। अनिक बिघन जाय आय संघार, हर का नाम तत्काल उदार। अनिक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हो मैला
मल कब हुना धोवै हर का नाम कूट पव खूवै ऐसा नाम जप मन रंग नानक पाईए साध कै संग जे मार के गने जाए न कोसा हर का नाम हुआ संग तोसा जे पेडै मंद गुबारा तै हर का नाम संग उजियारा जाह बंत तेरा को न सियानू हर का नाम तै नाल पछानू जय महा भयान तप तु काम तै हर के नाम की तुम पर छाम जा त्रिका मन तुझ आकर खै तै नानक हर हर अमृत बर कै भग जिना की बर्तन नाम संत जिना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उदरे जनकूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औकल साध कमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मंथन रंग रत्ती रंग कै नानक जन कै ब्रत विवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परै न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर धन जन कुआ प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सुतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पूजन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात्यो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संत हृदवस है संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग विड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछ अवर न हुए नानक गुरमुख नाम पावे जन को वे श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम मूल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रत्ना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करै बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिय एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे माओ दास तुपी सरथी वे अगन माय हुमत प्राण कनिक सब है वर भूम दान न्यौली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे ताओ पी हो मैं न जावे हर के नाम समसर कछ नाही नान गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर दे छुट्टै गर्भ गुमान मन ते हुट्टै सोच करै दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कबू न भिख्या टरै जल तो वै बहु देह अनीत शुद्ध का हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहमूच बहुत सियाणप जम का भव व्यापै निक जतन कर तृष्णा त्रापै भेख अनेक अगनी बुझै कोट उपाव दरगै नहीं सिजै छूट सुनायू पयाल मुह व्यापै माया जाल अवर करतू सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जप दुख जाय नानक बोलै सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लूरै सा संगे हों मैं छूरै जे को जन्म मरण ते डरै साच न की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान सा संग जाका मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते उच्चा जाका मन हुए सगल किरीना हर हर नाम चिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सृष्ट साचना सुख दुख जन समदृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन को तन तेरो नाउ निथावे को नाउ तेरा थाउ निमाणी को प्रभ तेरो मानु सगल कटा को देव हो दान करन करावन हर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जन हूँ आपे अपन संगा प्रवराते तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कवर न जान सुकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मैं उदम भला हर का नाम जपो जी सदा
सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुनरसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार एने सो प्रभ सदा संभाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चीत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासुआर सी गारिया गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध भर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साख सैन मुख पया बैठ को दैन एव निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श ले हो तो नानक सीजे जे प्रसाद धारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगुल समग्री संग साथ बसा दीने हस पाव करनी तरसना तिसै त्यागवर संगरचना ऐसे दोख मुड़ंद व्यापे नानक काढ लियो प्रव्यापे आदंत जो राखन हार तिस्यो प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नम निड पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगै मान तिसै बिसारे मुग्ध जान सदा सदायो भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संगरचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मान जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए अंध को मैं पतत विकराल नानक काट लिहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मान सुजात लोक बचारा करै दिन रात बाहर भेखंतर मलमाया छप सुनाए कछ करै छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुहा अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसे त्रय था जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गहले हो ओढ़ निभावे कहां बुझारत बुझै डूरा निष्कही है तू समझै पूरा कहा विष्णु पद गावै गुंग जतन करै ताओ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू आ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुहावै न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ के ग्रे पीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह होया हु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचेते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी तुम ते हुए सुआग्याकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लग हयान सुआए नानक कहू न सी जई बिन्नावै पत जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक भीना दे दस भीर ले तौ मूड़ा कहु कह करे जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ताकू की जय सद नमस्कारा जा कै मन लागा प्रमीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोग नानक तिन पाया गंत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतैन दोलास अपनी अमान कछ बाहुर साउले अज्ञानी मन रोष करे अपनी परती ताप ही खोवे बाहुर उसका विश्वास न हुए जिसकी वस्ति से आज्ञा राख्या प्रभ की आज्ञा मान माथे उसते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिर की छाया स्यों रंग लावे ओ बिनसै ओ मन पुछतावे जो दिसै सो चालन हार लपट रहे होते अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेहे ताको हाथ न आवै के ही मन हर के नाम की पुरी सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजो बन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्तु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अस्थिर भग साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है
मिथ्या तानी परोपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पय सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथि साकत की यार जा साच बिना कहूत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बृथा बिहाय मिग बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन बृथे सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाऊ नानक ताके बल बल जाओ रह तवर कचवर कमावत मनि प्रीत मुखो गंडलावत जन नहार प्रभु पर बीन बाहर भेख न काहू पीन वर उपदेश आप न करे आवत जावत जन में मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पानी तिन प्रभु जाता नान कुंजन चरण पुराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पह मान या पह आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव सियान सगल तेरा है सब का जान आत्म की रहत जिस भाव है तिस लय लड़लाए थान थनंतर है समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसनाट पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जो जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्या कतवर लुभाव है जे प्रसाद सुख से सोई जय मनाठ पैर ताका जस गावी जय जे प्रसाद तु सब को माने मुक्ता को जस रसन बकाने जे प्रसाद तिर रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप दर गय मान पावे नानक पत सेती कर जावे जे प्रसाद अरु कंचन देही लिव लावो तिस राम सनेही जे प्रसाद तिर औला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रवता कह जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाए दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे जे प्रसाद अभूखन पहरी जय मन तिसिमृत क्यों वालस की जय जे प्रसाद अस्व हस्त सुवारी मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रभु पर भी अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत्य सहत्याई तिसहत्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मनाट पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा नूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुरु प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद पेख विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परमगत भाव है जे प्रसाद सुख सह समावे सब प्रभु त्याग अवर कतलागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच जे प्रसाद सबकी गत हुए नानक जाप जपै जप सो आप जपाए जपै सो नाओ आप गाव आय सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी माया पू कछु न किन हूं लया जित जित लावो तित लगै हरनाथ नानक किन कह कछु न हाथ श्लोक अगम गात पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता होए सुनमीता नानक बिनवंता सा जना के चर्ज कथा अष्टपदी साधक संग को जल होत साध संग मिल सगली को साध के संग मिटै बिमान साध के संग प्रगटै सुग्ञान साध के संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक उपर जतन साध की महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही समानी साध के संग अगुचर मिलै साध के संग सदा प्रफुल्लै साध के संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुई सब की रेल साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतू तावे साध संग स्थित मन पावे साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरु साधक संग न भीगा पैरु साधक संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नाही हो ताप साधक संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई
साधक संग न कबू तावै, साधक संग सदा सुख पावै, साध संग बस्तक उच्चर लह, साधु कै संग अजर सह, साधक संग बसै थान उच्चै, साधु कै संग महल पहुंचै, साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म, साधक संग पाई नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साधक संग सब कुल उधार है, साध संग साजन बीत कुटम निस्तार है, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप फलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साधक संग सर्व थान गामु, नानक साधक संग सफल जनामु, साधक संग नहीं कचकाल, दर्शन भेटत होत निहाल, साधक संग कलूखत हरै, साधक संग नरक पर हरै, साधक संग यहाँ उहाँ सुहेला, साध संग विचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध हृद बसै, नानक उदरै, साध सुन रसै, साधक संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाओ, साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साधक संग लगै परम मीठा, साधु कै संग घट गडीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साधक महिमा भेद न जानै, जेता सुनै तेता बख्यानै, साधक उपमा त्यो गुण ते दूर, साधक उपमा रही भरपूर, साधक शोभा का नाही अंत, साधक शोभा सुदा बेअंत, साधक शोभा उचते उची, साधक शोभा मूचते मूची, साधक शोभा साध बने आई, नान सद पर भेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोय, अवर न पेखै सुबिन कोय, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय, अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्य मान, जैसे राज रंग को लागै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरजेक, ज्यो बसदा को खुदै कु चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सह सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए परगा, जैसे तारू पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा, मने अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए, नानक जिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी ना तुमरस, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल युक्ता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी का हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभसंग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी का हो चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय आखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उतार है जो अंतर नाम, सर्व मैं पिक है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक अपर सगल निस्तार है, अष्टपति मिथ्या ना ही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शु, पर त्रैरूप न पिक है नेत्र, साध की टैलसन संग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हरे, मन की बास न मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कूट मध्य को ऐसा परस, वैष्णु सोजी सुप्र सुप्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वह ने कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ वह नाम जपावै, नानक वैष्णु परम गत पावै,
ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲ ਖੂਵੈ ਤਿਸ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਵੈ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤਨੀਤ ਮਨ ਤਨੀ ਅਰਪੈ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੁ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਹੈ ਸੁਧ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ ਸੁ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾ ਆਵੈ ਭੇਦ ਪ੍ਰਣ ਸਿਮਰਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ ਸੁਖ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਚੌ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਸਾਹ ਸੁਨ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਤਾਰ ਹੈ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਪਾਤਰ ਕੋ ਉਤਾਰੈ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾਉਖਦ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮ ਦਾਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸਨ ਧਰੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਭਾਇ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਣ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮਿਤ ਆਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈ ਸਾਰਕ ਤੈ ਸਭ ਸੋਗ ਸਦਾਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕੋ ਪੁਰ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿੰਨ ਆਓ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ ਪਸਰ ਆਪ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ ਪਸਰ ਆਪ ਅੰਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਾਧੀ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਬਿਨਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੂਕ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਜਨੰਤ ਨ ਪਾਰ ਅਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਵਿਧਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਤੀਰਥਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭਰਮੈ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤੁਪਿਸਰ ਹੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾਵਿ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਭੇਗਾਤਮ ਨਿਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਭ ਕੋ ਹਿ ਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਹੇ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿਰਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸਿਅਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣਾ ਸੂਤਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਕੀ ਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭੂ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਾਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੋਜੋਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਤਕ ਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਇ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਕਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰੇ ਉਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੇ ਕੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮਾਤਾ ਕੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋਵ ਤਾਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਭੈ ਸਤ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੁਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੋਇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੇ ਕਹਿ ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ ਜਲ ਤਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋ ਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਪ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨੇ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਧਾਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਵਿਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਮੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਾਨੂ ਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ
प्रभाव है बिन सास तेरा कह प्रभाव है ता हर गुण भाख है प्रभाव है ता पत उधार है आप करे अपन विचार है दुआ सिरिया का आप स्वामी के लिए विकसे अंतर जामी जो भाव है सुकार करावे नानक दृष्टि अवरण आया वह कहो मानुक ते क्या हो आवे जो तिस भाव है सुई करावे इसके हाथ हुए ता सब किच ले जो तिस भाव है सुई करे अनजान बिख्या मैं रचे जी जान तापना बचे पर मैं भूला दह दिस्ता आवे निम कमाए चार कुंड फिरे आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेजन ना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म ग्रीव निवाज जाका दृष्ट कछु न आवे तिस तिस काल दह दिस प्रगटावे जकू अपनी करे बख्शीसता का लेखा न गने जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जी वै देख बढ़ाई इसका बल ना ही सहाथ करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावे सोई फुंथियो कब हूँ ऊंच नीच मैं बसे कबू सोग हर करंग हसे कबू निंद चिंद व्यवहार कबू बकास पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबू निर्त करे बहुपात कबू सोए रह दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की होत रिवाल कबू होए वह बट राजा कबू पे खारी नीच का साजा कबू भगीरथ में आवे कबू भला भला कहा वह ज्यों प्रवरा कहते ही रह गुरु प्रसाद नानक सच कह कबू हो पंडित करे विख्यान कबू मुन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग होए जिया निक जुन पर मैं परमिया नाना रूप ज्यों स्वागी दिखावे ज्यों प्रभावे तिवै निचावे ज्यों तिस भावे सोई होए नानक दूजावर न कोय कबू सात संगत उपावे सुस्थान ते बौर नावे अंतर होए ज्ञान प्रगास सुस्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रतिक रंग सदा बसै पार ब्रह्म के संग ज्यो जल में जले आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु का सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आया अपनिवार तले बड़े बड़े अहंकार या नान गर्भ गले अष्टपति जिसके अंतराज विमान सो नरक पाती हो स्वान जो जानना मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आप सुखो करवंत कहा वह जन्म मरे भोजन प्रमाव है धन भूम का जो करे गुमान सो मूर कंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुक्ता गया सुख पावे धनवंता हुए कर गर्भ भावे तिन समान का संग न जावे बोल उस कर्मान को पर करे आस पल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटा बिमान उसो जन नानक तर गए परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरतारे नक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार नक जतन करा तुमने द्रव्य हर दर गए को कैसे गवे आपस को जो भला कहा वह तिसे भलाई निकट न आवे सर्व गिरें जाका मन होए कौन नानकता की निर्मल सोए जब लग जाना मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोय जावे जाना मैं किच करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मी तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माये तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटीला कूट तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे नक भोग विख्या की करे न तृप्त आवे खप कमरे बिना संतोख नहीं कूरा जय सुपन मनोरथ बिरथे सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावने आपे आप सदा सदा नानक कर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ का विचार जैसे दृष्ट करे तैसा होए आपे आपा प्रभ सोए जो किच गिनो सो अपने रंग सब ते दूर सबु कह संग बूझे देखे करे विवेका पह का पै अनेक मरे न बिन सयावे न जाए नानक सद ही रहा समाए आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कह साथ आप किनो अपन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते पिन कहो किछ होए थान तनंतर एक कै सोए अपने चलता करने हार कौत करे रंग आप हार मन मया मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वकियानी सच सच सच सब कीना कूट मध्य किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप वा सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कर सुनी श्रवण बकियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उतरन हार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन अर्जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कह दुख नरक में पाए संत कह दुखन मत हुए मलिन संत कह दुखन शोभा तेहीन संत के अति को रखे न कोई संत कह दुखन तान फष्ट हुए संत कृपाल कृपा जे करह नानक संसंग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख भवै संतन कह दुखन काग जुन लवै संतन कह दुखन सर्व जोन पाए संत कह दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कह दुखन तृष्णा में जलै संत कह दुखन सब कुछ चलै संत कह दुखन ते सब जाए संत कह दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाहि नानक संत पावे कहो भी गत पाहि
संत का निंदक मात ताई संत का निंदक किन टिक न पाई संत का निंदक महात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावे तो उसका भी हुए मोक संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी माँ अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन मैं मरे संत की दुख न सुख ते डरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नान संत पावे तो लय मिलाये संत का दुखी अत बीज ते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान भरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यो सास बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ कि चिना है अपन बीजा पे ही खाए संत के दुखी गवर न रखन हार नानक संत पावे तन ले उबार संत का दुखी हो बिललाए ज्यो जल भी हुन मछली तलफड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पाव किंदन नहीं त्रापै संत का दुखी छुट्टे केला ज्यो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म तिर संत का दुखी सदमितया कैद किरत निंद का तुर ही पाया नानक ज्योतिष पावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सुजाए संत का दुखी सदा सह काइय संत का दुखी न मरे न जीवाइय संत के दुखी की पुजै न आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत के दुख न त्रष्ट है कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पया कीर्तन मेटे कोई नानक जाने सच्चा सोई सब कट तिस्क्यो करने हार सुधा सुधा तिस्को नमस्कार प्रभु की उस्तुति करो दिन रात सत्याहु सास किरा सब कछ वर्तै तिसका किया जैसा करे तैसा कुथिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे तिस आप नाम देवड भागी नानक जन से श्लोक तजो सियान सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आसर मन रखो नानक दुख परम भो जाय अष्टपदी मानु की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए रहे अघाय बहुत मंत्र सुन लग गया मारा रखे कुआ मानु कह कुछ नाई हाथ जिसका हुकुम भू सुखोय जिसका नाम रखंड पुरोय सिमर सिमर सिमर प्रभ सोय नानक बिघन लग गए कोय उस्तुत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पीयू सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेग ठाकुर का रंग सा संग बिन सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिया हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर गैनान कूजन मत्था बिट भागी ते जन जग माए सदा सुधार के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पहचान तुत कियो सोजी जान नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपन आप सुजय तिसकी जानो तृष्णा बुजय सात संग हर हर जिस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अंदिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जे जन किया सा तिसकी कटिय जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर ब्रह्मन चुते आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस पर वे अपना कृपा करे सो सेवको किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद ता सब बुझिया जब देखूं तब सब किछ मूल नानक सो सुखम सोय स्थूल न किछ जन्मे न किछ मरे अपन चलता पी करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप वनिक जुगत रचता पुता अविनाशी नाही किछ कंड धारण धारे हो ब्रह्मांड अलक अभे पुरख प्रताप आप जपाए नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो पावन सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का सब जप भय निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करह बड़ भागै नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किछ करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाय हुवै सो होए करनै हर पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीट लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे ते समाए समाए होए सुख निदान उनु बने आए आपस को आप दिनु मान नानक प्रभ जन एक को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ व्यथा जन नहार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांड नहार गोपाल सर्व जी आय अपे प्रतपाल सर्व की चिंता जिस मन वाहे सगल की चिंता जिस मन वाहे तिसते व्यर्था कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए जिस सो प्राणी लुचै कोए तिस बिना ही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मुह प्रभ की जो सगल कट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस तिसका दिया दर्भ है सूरा जे को कहा वह प्रभ की बिना कला बिना कहता वह जे को हुए वह दातारू तिस दिन हार जाने गवारू जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सूजन सदा रोग
जो मंदिर को थम है थमन त्यों गुरु का शब्द मन है स्तंभन जो पाका नाप चढ़त रह प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हुए बिगा जो माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिललाइय पूर्व लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे जान कौन बसताई तेरे संग लपट रो रस लोभि पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद छेती घर जाए जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज मान लेहु मन मोर राम नाम हृदय में तो लाद के संत संग चाल अवर त्याग किया जिंजाल तन तन कह सब कोई मुख जल हर दर गै सोए हो व्यापार विरला व्यापार है नानक ताकर सद बलिहार है चरण साध के तुय तुय पियो अर्ब साधको अपना जियो साध की धूर करो स्नान साध ऊपर जाइये कुर्बान सीता साध सेवा वट भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनिक विदंते साधु राख हर गुण गाय अमृत रचा कह उठ गई संत दरे आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवल नहार भूखे को देवता दार सर्व निदान जाके दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाए सबके तिस्का करना जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्यूच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सूजन निर्मल थिया जा कह मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिया त्यो लोए जा कह देखो हुए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत सची दृढ़ सचाया कार सच वर्त सचा पासार पार ब्रह्म सिंह सच कर जाता नानक सूजन सत समाता श्लोक रूप न रेख न रंग के चित्र गुण ते प्रभिन्न तिसे बुझाए नानका जिस हुए सुप्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रमन में राख मानुक की तू प्रीत आग तिस्ते पर न ही किछ गोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाओ नानक मन हो अनुराओ मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जाका नेत्र फूर तिसका मंत्र न जाने हो रन ध्रुव मंगल सजा कह सर्व थोक सुनिया करता कह राज में राजयुग में जोगी तप में तपीश्वर ग्रस्त में भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नान तिस पुरुका किन अंत न पाया जा की लीला की मित नाई सगल देव हारे बगाए पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण में जा को परमाए जन्म मरे फिर आवे जाय उच नीच इसके स्थान जैसा जन आवे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे एक रंग नाना भिद किनो विस्तार प्रभ अवना सु एक अंकार नाना चलत करे किन माए पूरे हो पूर्ण सब ठाए नाना भिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाऊ जब जब जीवे नानक हर नाऊ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान त्यार नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुष समाहे सुमानी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुरु ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर हृदय प्रवेश सत नृत बुझा जे कोई नाम जपता की गत हुए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिरसो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक ज्योत सुभाव है सोवरतिया बिस्मन बिस्म रहे बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बुझा तिसे आया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुर कै वचन पदार्थ लहे हुए दाते दुकाट नहार जा कै संग तर संसार जन का सेवक सोवट भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद।

मन तन यंतर एही सुआऊ नेत्र उपेख दर्श सुख होए मन बिकसै साध चरण तोय भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस्त दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाय प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण धार जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत

भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनिक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाए। वो भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत,

अष्टपदी। जब अकार इहु कछ न दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिहन न जापत, तब हर्ष शोक कहो किस है व्यापत। जब अपने आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस हुवत परम।

जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे आपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अविनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किच होए जब अविगत अगोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कोमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तै छल छिद्र लगत कहु कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तह किसे भूख कवन तृप्तावे करण करावन करने हार नानक करते का नहीं सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला या पह परवीन तह वेदक तेव कहा कोचीन जब अपने आप उरतारे तो सगन अप सगन कहाँ बिचारे जय अपन ऊच अपने आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल छेद भेद सुमाया उहां किसह व्यापत माया आप सुखाओ आप है आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जह कह एक एक भगवंता तह कौन चिंत किस लागे चिंता जह अपन आप पतियारा तह कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत उच ते उचा नानक आपस कौ आप पहुंचा।

नरक कु सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हौ मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तौ नानके कै।

अष्टपदी। आप कथै आप सुननेहार, आप है एक आप विस्तार। जात सुपावै तां सृष्टि उपाए, आपने भाणे ले समाए। तुम ते भिन्न नहीं किच होए, अपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभ जीवा पुबजाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता।

नाथ जिस राखै तिस कोए न मारै सो मुआ जिस मनो बिसारै तिस तज अवर का को जाए।

अंतर बाहर जानो साथ, गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार, पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप, प्रतपाले जीयन बहुपात, जो जो रचियो सो तिसहत्यात, जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करह हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक इक जानिया, जन लागा हर एक नाई, तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक कौ सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार, बंधन तोर पहे निर्वैर, अनदिन पूजे गुर के पैर, ये लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभु आप मिले, साध संग मिल कर हो आनंद, गुण गाव हो प्रभ परमानंद, राम नाम तत कर हो विचार, दुर्लभ देह का कर हो उदार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का इह सुवाओ, आठ पहर प्रभ भिखो नीरा, मिटे ज्ञान बिन सह अंधेरा, सुनोपदेश हृदय बसावहु, मन इच्छे नानक फल पावहु, हलत पलत दोए लेहु सवार, राम नाम अंतर उरतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिखिया, मन तन नाम जप हो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निबह खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर नया वह जाहे, तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरे रखन हार त्याय, निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सुहोत निहाल, ताके निकट नयावत काल, अमर पय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया, श्लोक ज्ञानंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश,
हर कृपा ते संत पिटिया नानक मन परदास सष्टपदी संत संगंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सकट माही अनिक रंग नाना दृष्टाही नव निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तैनाद कह न जाई चर्ज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाई नानक तिस जन सो जी पाई सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रह भगवंत चरण वाहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माही चार कुंट दिसे समाही तिस्ते पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मह देख सस्यर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कबू डोल सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइय गुण अमोल सर्व ज्योत मैं जा की ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में इहो विश्वास संत जना का पेखण सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत जिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एकंकार अनिक कला लखी न जाए जिस भावै तिस लय मिलाय कवन निकट कवन कहिय दूर आपे आपा भरपूर अंतर गज से आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूता वरतारा सर्व नैना पेखन हारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आवन जान खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिप्त रह जो किछ कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए स्थे हुए सुना ही बुरा ओरे कहो किने कछ करा आप भला कर तू तत्नी की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोता अपन संगराच ताकि गत मित कही न जाए दूसर हुए तन सोजी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने ते सदा सुख हुए आप मिलाए ले प्रभ सोए ओह तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन का यह सुआउ जन कै संचित आवै नाउ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन काओ सदा नमस्कार स्लोक पूरा प्रभ आराधिया पूरा जाका नाउ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित्या गोत्रांग संत जना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करहु सास संगन सागर तरहु हर तन के भर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सास संग भज परमानंद नरक निवार उदारु जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग ने गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंग बार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक साध के बचन
अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कह मन लागा रंग जय जय शब्द अनाहत वाजय सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत के माथे नानक सुधरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साथ सुंग लैन सुप्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण होए सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तद करहु संत मीत सावधानी का गरचीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सुहूत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थानु बहुर न हो वयावन जानु हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी दृष्टिता हे फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मै ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सासंग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्त कर्म प्रपाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै निर्मल

निर्मलता के कर्म सबसे उच्चता की शोभा बनी नानके गुण नाम सुखमनी सबसे उच्चता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लाख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लेवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होहे ता इक न चलै नाल केव सचियारा होइयै केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेखो दुख सुख पाईऐ है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईऐ है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तानखे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए भाखिया भाउ अपार आख है मंगा है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलियै जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानियै सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निधान गावियै सुनियै मन रखियै भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण भाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसोणी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोए न सुजई जे तिस गुण कोए करे सुना सिद्ध पीर सुरनाथ सुना धरत धवल आकाश सुना दीप लो पाताल सुना पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुना दुख पाप का नास सुना ईसर बर्मा इंद सुना मुख साला हनमंद सुना जोग जुगत तन भेद सुना शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुना दुख पाप का नास सुना सात संतोख ज्ञान सुना अड़सठ का इशनान सुना पढ़ पढ़ पावै मान सुना लागै सहज ध्यान
नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, सुना है सारा गुणा के गाह, सुना है सेख पीर पात साह, सुना है अंधे पावे राह, सुना है हाथ होवे असगाह। नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, मन्ने की गात कही न जाए, जे को कहे पिछय पछुताए। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए। मन्ना है सुरत होवे मान बुद्ध, मन्ना है सगल पवन की सुध। मन्ना है मोहे चोटा ना खाए, मन्ना है जम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए। मन्ना है मार्ग ठाक ना पाए, मन्ना है पत सिंह परगट जाए। मन्ना है माग ना चले पंथ, मन्ना है धर्म से ती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए। मन्ना है पावह मोख द्वार, मन्ना परवार साधार। मन्ना तरह तारे गुर सिख, मन्ना नानक पावह ना भेखो। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान। पंचा सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवे सचियार, तबले ऊपर केता पार। धरती होर पर होर होर, तिस ते पार तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फेराहे। असंख मलेश माल पाख खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार। नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाम असंख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख कह सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण। अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे। जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ। विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार। वारे न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। धरिए हाथ पैर तन देहे, पानी धोता है उतर सुखे। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए। भरिए मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग।
पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवह जाहो। तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतर गत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सो वेला वखत कवन कवन थेत कवन वार कवन से रुति माह कवन जित होआ आकार। वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वखत न पायो का दिया जे लिखन लेख कुराण। थेत वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सरठी कौ साजे आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा। वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपौ जाणै अगै गया ना सोहै। पातालां पाताल लाखो आगासां आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात। सहस अठारह कहन कतेबा असलो एक तात। लेखा होए तां लिखिए लेखै होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। सालाही सालाहे एती सूरत न पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद न जानिए। समुंद साह सुलतान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन होना भी सरा है। अंत न सिफती कहण न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुनण न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए। वड़ा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड़ ऊंचा होवै कोए तेस ऊंचे कौ जाने सोए। जे वड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड़ा दाता तिल ना तमाए। केते मंगै जोद अपार केते आगणत नहीं विचार केते खप तुटै वेकार। केते लै लै मुकर पाहे केते मूरख खाही खाहे केते आ दुख भूख सद मारो ए पे दात तेरी दातार। बंद खलासी पाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए। आपे जाने आपे दे आखै से पे केई के जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पात साही पात साहो। अमूल गुण अमूल वापार अमूल वापारिये अमूल भंडार अमूल आवै अमूल लै जाहे अमूल पाए अमूला समाहे। अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बखसीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान। अमूलो अमूल आख्या न जाए आख आख रहे ले वलाए। आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण। आख है बरमे आख है इंदो आख है गोपी तै गोविंद। आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है किते कीते बुद्ध। आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव। केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करे ता आख ना सक है केई के जे वड़ पावै ते वड़ होए। नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर के हा सो घर के हा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। केते राग परी स्यों कहियन केते गावण हारे। गावै तुहनो पौन पाणी बै संतर गावै राजा धर्म दुआरे।
गावै चित गोपत लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावै ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंदो इंदा सुन बैठे देवत्या दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावै जोध महाबल सूरा गावै खाणी चारे गावै खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सेई तुदनो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कार कार जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जीव ते सदी वडे आई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेबो नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की कर है बेपूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश तिसाय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संयोग विजोग दोए कार चलावह लिखिया वह भाग आदेश तिसाय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव ते सुभावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै ऊना नदर न आवै बहुता एहो वेडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बहु लख होहे लख हो वै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस एत राहे पात पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निसान कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखा हो कर्म केते पवन पाणी वै संत्र केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िया रूप रंग के वेस केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मोन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत
ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਹੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਤੁਟਾਲ।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार, धर्मी धर्म कर गवाव मंगे मोख द्वार, जपी सदा में जुगत न जाने छट बहे कारोबार, सबको बुरा पे होवे घटना कोई आखे, पत प्राण पिछे पाइए ता नानक तोले।

हर के दास सुहेले पाई, जन्म जन्म के किल बिक दुख काटे, आपे मेल मिलाई रहाओ। एहो कुटुंब सब जी के बंधन पाई, परम भुला संसारा, बिन गुर बंधन टूटे नाही, गुरमुख मोख द्वारा, कर्म कर है।

होए न किस ही केरा। गुरमुख महल पायन गुण गावन, निज घर हुए बसेरा। एथै बूजै सो आप पछाणै, हर प्रभ है तिस केरा। सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाई है।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे।

सत्संगत जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार्षिक भगवती पाशे दसवीं प्रेम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कानून दयावैताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई हुए सहाय दसा पाची दे पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पारदार का चैन करके घर से बोलो जी वाहेगुरु गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटिया जपिया चपिया जरा नाम जपिया वन छकिया दे चलाई देव भाई दे के खेड किया तेना प्यारे सत्यारे की कमाई दते अंदर की बोलो जी वाहेगुरु जिन्ना सिंगा सिंगनिया धर्म है सी दिते बांधवा कटवाए खोपड़िया लोहाइया चरखड़िया दे चढ़े हर न चराए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा सिखी से देखे सहसा सिंह निभाया तेना जी कमाई दा ध्यान अंदर की बोलो जी वाहेगुरु पंजा गुरुद्वारा का ध्यान अंदर की बोलो जी वाहेगुरु प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता हुआ चित आवन का सद का सर्व सुख हुआ जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियाए देखते की फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबाले बोलो जी वाहेगुरु सिखा सिखी दान केस दान रायत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुगो जुगो अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु सिखा दा मन नी मैं मत तुची मत पद के राखे आप वाहेगुरु गुरु की बिरवाज पंथ सदा सहाय दता जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब से होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जे पंथ छोड़िया करें दसें दास सेवा संभाल दादा अपने खालसा जी ने बख्शो ये न्योटिया की ओट गुरु ने आसरिया आसरे गुरु धन धन गुरु दता जियो दोहे कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताने रास हे गिरवन बाज आप दे चंद कमला अरदास भी दता जी अनबख्श की है अमृत वेले प्रकाशमान हुए शक्त ने दर्शन दस दे के निहार दरदार जी हो बेहद बाणियों के पाठ हुए ऐसा रागीव सिंह ने आपके चरणा जासा की वार कितने कितने विद्वान भीर ने अज हुक्मनामे की कथा प्यार कीजिए कृपा करो होइया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सच खंड प्रवान गुरु बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय कृपालता करो जी अगो तो शो से पित्र बाणी विचारी बल बुद्धि बख्शिश करो इस माज इस खुशी में आप जी बख्शिया दाटा पितर आप शादी देगा त्याग हददार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सत्संग दी रखना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुख कलेश रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी हे गुरु गरीब नवाज आप जी बख्शिया दाता जो लगना चुट सारिया प्रवान करनी ततार आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैलिया सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कला बख्शो अरे सदा इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शो की पालता करो गरीब नवाज मेरा कर आओ अमृत वेड़े तो लैके दाते आई साफ संगत जी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत दर्द तेरे पर बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गरीब नवाज से कौम खालसा पंथ नूं एकता सुभाग प्याज बख्शी करके सत दो दर बख्शो सदा ही चरण जुड़ो गुरबाणी के प्यार बख्शन की पालता करो जी गुरु गरीब नवाज दूर दराडे करें बैठी लाइव कत्या की सरवण करियां सारी संतान हाल जी प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ तो तारा आप बख्शी संतान तो बख्शे ने सिख दाल के चरण धनबाद कर दें शुक्रिया अदा कर दें बेअंत माया ऑनलाइन गुरु घर सेवा सिंह तर सकता माया पेटा कर चरण प्रवान करो बख्शा साहब दमाइया सबर करो कर वादार सब सकता दिन शुभकामना पूरी करो जी गुरु गरीब नवाज मेरा कर आओ सेवा प्रवान करो पूरे जगह माफ बख्शो पितर गुरु बख्शे के प्रांत घड़ी वास पाठ करने वास्ते आग्ञा बख्शो रहते कार सवार के चरण दुनवादी बनाओ शुद्ध अरे पितर सेवा लिया दिखवादार सही प्यारे मेरे दिन आपका नाम जता नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे त्रिवाग दा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा आग्ञा भैया काल के तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे
जो ब्रह्म को मिल बोटी है कोरी शब्द में राज करेगा खालसा आगे रहे न को ख्वार ऐसा मिलेंगे बदे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चरे सो तेरे बा जो शरदा कर सेम दे गुरु पारे उतारन हा खंडा

रसना हर रस चाखे मुए जियो, अन रस साध गवाए, सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम ते आए सदा।

धन छोड़ परदेस सिधाए, दूजै किनै सुख न पाया, फिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए। बिखिया लोभ लुभाए भरम भुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए। चाकरी विडाणी खरी दुखाली, आप वेच धर्म गवाए। माया बंधन टिकै नाही, किन किन दुख संताए। नानक माया

सास सास न घड़ी विसरे पल मुहूर्त दिन राते नानक सारंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिए प्रभ दाते एक बिनो करूं।

जह तिया वही कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासी मिल दर्शन सुख।

जिन्हें सब कल तारिया, तुद बचन गुर कै वस किया, आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया, आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज राखो, सब सेवक शरण तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत त्यावै।

जो एक मन त्यावहे मन बचन कर्म जे तुद आराधहे से सबे फल पावहे पल मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख

बेअंत गुण तेरे कथे न जाही, सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवां। श्लोक पतत असंख

काल दुख फाथो फाथो दुख हरन दीन सरन सिरी तर चरण कमल अराधिया जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधिया कलमल।

तय पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया। भगत वचल पुरख पूरन मन है चिंदया पाईए। तम अंधकूप ते उधारै नाम मन वसाईए। सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनिक भगत।

रोग शोक सब दुख बिन सह जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करहो कृपा समरथ सब कलतारी।

संग सुमरत पुरख मिलाए, नानक तिन मिलिया सुर जिन द सुख दाता, सेवड़ भागी माए सखी।

नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन्न न को सो शरण परै जेह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संशय भरम नहीं कछ व्यापत।

अनेक जुगत शास्त्र कर पातो, ज्ञानी सोए जा कै दृढ़ सो, कहत सुनत कछ जोग ना हो। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जा कै उसन

दिनी, आपन मोह कटे कट दिनी। ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरों बिखम एह माया। कर कृपा सत संग मिलाए, नानक ताकै निकट न माए। श्लोक किरत कमावन।

0: करो स्नान साथ उठकर जाइए, कोई बड़ा साधु राखे हरगुण गाय अमृत चाखे जिनका को जी वालन हार रुके को देवता आपकी कृपा करने जो फिर भी दूसर हुआ न होगा कृपा जिसको नाम दिया नानक सूजन ने मत दिया भगत सुनिए ते रोए जाके हृदय साचे जिस साचा आकार सच वर्ते साचा पाकार परे नाई किए शरण निरंतर
1: आपके बिना आपके जाना गैर गंभी पाओ नानक
0: करना
1: जाकर नेत